0: रेडियो आदि खुला 105.4
1: समी चो 14 के में बोदे लोटी पर्दीरो बैंगे ने विवरण पी विषय मई खाता लिखै हमरो
2: खै खै बहु कोई लोटरी भर दिलवा
3: आंगी समी जो लोटरी पर्दी हु छाताई गुदी
2: बर्दी आ बर्दी बा लोटरी खले पर्दिम बा सैली मेसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खनै बनी खै बिसा खै मई विश्वास आनन फोनै खले पनि आफै विवरण खै मई आपिन खबै बनी वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खै मई आरी सुमी बैंक आफै बनी आरी
1: सतर्क न ठगि सक्या पर्दैन
3: सिद्धार्थ ब्यागर क्यारे जन हेदरी जारी संदेश
0: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई रेडियो आदि खुला 105.4

विशेष आधी खुला खबर को साथ में हिमाल सुन चाँदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुन चाँदी पसल वालिंग बजार सैंगजा।

0: पहले हम लोग आने में 8 बजे का छा
1: इस समय को साथ में जितू सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िए डिपार्टमेंट स्टोर को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: रेडियो आदि खोला 105.4 आपने ख्याल रखना।

0: ठीक ना? अरे हम लोग आने में 9 बजे था।
1: इस समय को साथ में जितू सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िए डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: रेडियो आदि खोला 105.4
3: रेडियो आदि खोला 105.4

0: तमी चो चो दाक्या में बोधे लोटी पर दी रो बैंगे ने विवरण पी भी है मुई खाता लिखे हमरो खाई खाई बहु
1: कोई लोटरी भर दिलवा
2: आंगी समी जो लोटरी पर दी छापताई गुरी
1: भर दी आ भर दी वा लोटरी खाली पर दी बा सैली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खनाई बनी खाई बिसा खाई मई विश्वास आनन होने खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबई बनी वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बनी आरी
3: सतर्क
2: सिद्धार्थ ब्यांगर क्यारे जन हेदरी जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई
5: आहा कस्तो ब्रान्डिङ अनि टिकाउ होला जस्तो छ है जुत्ता त गजब लाग्यो
6: हो र मैले नि राम्रो लागेर गोल्ड स्टारको अथराइज शोरूम आरती उज्जवल सुज हाउस वाली नयाँ बजारबाट जुत्ता अनि चप्पल किनेर ल्याए
5: मलाई नि चाहिएको थियो आजै त्यही जान्छु
6: गोल्ड स्टार को आधिकारिक शोरूम अथोराइज शोरूम आरती उज्जवल सुज हाउस वालिंग आठ नया बजार चोकईमा गोल्ड स्टार कंपनी का पार्टी सुज स्कूल तथा ऑफिशियल सुज स्पोर्ट्स सुज लेडीज जेन्ट्स सुज तथा जुत्ता चप्पल को होलसेल एवं खुद्रा बिक्री गरिन्छ
5: गोल्ड स्टार को अथोराइज शोरूम आरती उज्जवल सुज हाउस वालिंग आठ नया बजार चोक
6: प्रोप्राइटर बोधराज रेग्मी र सरस्वती रेग्मी
5: मोबाइल 9849618921 र 9842349.

एस आदि खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सैंजा।